Ano la sa pusa jazo Nepali sa Nepali jazo chini na suna dila a jazo sa jimi ko bukhati ite na wang may sa tapdi purus satyaman josiya satyo ni ko ko budi alas ta saitik jazo ko sala sa tapdi purus satyaman josiya satyo ni do ya budi ya lasta hali newad bu ya saiti kawa nepal basa saiti dobya gasale wangu nepal sambat 1146 basla ga saptami atala de go baisak 26 gate kopondolia satwa ki dabli taji ko sago jazo jula nepal basa saiti dobya kaji lok kavi lise nepal ratna raj bhai chakamiya sabhapati te nepal basa satyaman josiya saiti yogdan bisek jugo thugo jazo ya mu prabhakta pradhyapak madan sen bajracharya kha hali newad bu ya kendre आयो भासु मनोहर लाल श्रेष्ठ जुया भिन्तुना न्यङका सुरुजुगु थुगु ज्याझोले भाषाविद पौबा सामी लस्कु स्यासे न्युगु न्युगु महाकाव्य चोया दिम सत्यमोहन जोशी नेपाल भाषा तजिको साहित्यिक योगदान याना दिम हलि नेवा दबुया मु संरक्षक जुगु खन यथाना दिला सङ्गु चरणे जुगु ज्याझो या नापाङ्गु चरणे शान्तराज साकिया विशेष कुतले सत्यमोहन जोशी नापस्वाना सङ्गु मे अपरा भजन प्रोजेक्टर एक के निजाजो को खा न्यू को चरणे जाजो को था सत्यमन जोशी जो यदि को थीथी चिना खा साहित कार्मी प्रतिसर सैमी साक्य सुरेन अंजना ताम्राकार कुल बहादुर महर्जन अर्जुन नेपामी विमल प्रभा बज्राचार्य मिनर्वा शर्मा विमला मानन्दर दिव्या ताम्राकार पूर्णिमा साक्य पिन्सन यङ्गा दिगु खा प्रवक्ता मु वक्ता प्राध्यापक मदन सेन बज्राचार्य सत्यमन जोशिया जय प्रकाश महाकाव्य नेपाल भाषा तजिगु महाकाव्य ख चितधर हृदय तक थ त मेघु सगु महाकाव्य चो धगा सुना धासा सत्यमन जोशिया जय प्रकाश महाकाव्य स्व धगा धा धगा गु ख यथा दिल थो ज्याजोले सत्यमोहन या साहित्यिक योगदान व वेक या व्यक्तित्व व कृतित्व विशेष पहा वक्ता पी नेपाल भाषा एकेडेमिया उपकुलपति डाक्टर पुष्पराज राजखर्णिकार अनुराज जोशी शङ्करापुर नगरपालिका या मेयर समिता श्रेष्ठ लोक साहित्य परिषद या नोको लक्ष्मी सभा साक्य अलि हलि नेवाद बोली पास च्याप्टर नाय नाय हो रमेश मानमुनि कार्पीसँग थगुन गख पङ्का दिल पूर्णिमा साक्य न्याखादिको थो ज्याजोले सभापति या थासा नेपाल भाषा साहित्य दबुया कजी राजभाइ जोखमी सत्यमोहन जोशी नेपाल देश जोखमको हलिमय हनी बम नेवा महारथी ख भेगु ख निथना दिल थोजाजो लोक साहित्य परिषद वहली नेवा दबु नेपाल च्याप्तरिया विशेष गुहाली जुगुजुल जजो नेपाली छिनी नसुना दिल आज जो साखमजी छपु मेगु मिस्वा

दुन काखन ल सकु स ज्याझो नेपाले स नेपाले ज्याझो छि नेना सुना दिल ज्याझो ना पदु गुड लाइफ बिस्किट्स अले जिगुना ख रश्मिला ज्याझो स आ हक न छि मेगु बुख पाखे भने आयो हो लागि जि कयागु बुख ख लहना वापौ छिन सो ददुगु लस्ता जुगु ज्याझो या बुख लहना वापौ छिन सो ददुगु लस्ता थ्वये वंगु आइतबा सगु त जिगु ज्याझो जुल ज्याझो स म पाहा कथ प्रतिनिधि सभाया सदस्य कुल भक्त साक्के जु थेना दिगु ख अले थो ज्याझो स वेकय नपना प ये महानगरपालिका या नि वर्तमान प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य निवादी दुबे नाय रश्मिला प्रजापति नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ नाय लक्की चौधरी प्रेस काउन्सिल नेपालिया मुख्य अधिकृत सविन्द्र भूषाल बिन थिङ्गु ख अले वेकअप सथगु खन तगु ख ज्याझो

सा नवासी मुंग पहा कुल भक्त साक्के जो सरकारों निजी संचार माध्यम या तो विज्ञापन मबी को निर्णय विरुद्ध संसदीय सौत्वे की गुज़ी तकाना दयादी को खासा चीन स्वादक क्यों गुलस्ता लहना वापो या तो युको युको भेंटुना विषय जनता या स्व नवाई को संचार माध्यम या तो संरक्षण या मांगुली आखतों सरकारों बिया वया संगो सुविधा को पालेगु दुख या खां खा रखाना दया दिला जैसो सो युको युको सिरपातनो लाल हागु खा नीदो तकास सहित लहना धर्ममोती पत्रकारिता सिरपा 1145 यानी AP1 कॉमी राजनापी दिया तो वो 1146 यानी थी खबर सेंटर ऑनलाइन या संपादक उत्तम कुमार श्रेष्ठ या तो लहलागु खा अधे छिदो नगद राशि दुगु लहना केशव कृष्ण बदन मातृभाषा पत्रकारिता सिरपा 1145 यानी थी इमेज कर्मी के मानंदर या तो वो 1146 यानी थी नेपाल टेलीविजन कर्मी शकुंतला महर्जन या तो लहलागु खा लहना शर्मिष्ठा सुर सम्मान 1145 पाखे वरिष्ठ निर्देशक पवन जोशी व 1146 यानी थी कलाकार आराध्य लक्ष्मी खड़गे या तो सम्मान यागु खा थुगुदे लहना मधुमा पत्रकार भी सुशील बीर सिंह कंसाकार व सुरेश किरण मानंदरिया नामे न पत्रकारिता सिरपा लहलागु खा लहना सुशील बीर सिंह पत्रकारिता सिरपा 1146 नेपाल समाचार पत्र या सहायक संपादक सुनील महर्जन या तो निदो दास सहित लहलागु खसा नी न्यादो दास सहित लहना सुरेश किरण पत्रकारिता सिरपा 1146 वरिष्ठ कार्टुनिस्ट रविन्द्र सैमिया तो लहलागु ख लहना बापोय प्रधान संपादक निरपेन्द्र लाल श्रेष्ठ व व्यवस्थापक सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ तिथि पंग व हत्या दथिन लहना बापो थन्तक मधिक पिहा व्या चुंगुदु तका दया दिसे भविष्य मेमेगु सामग्री जुना वेगु जुई तका न दया दिल सिरपा नाप हनिजेलिपा सांस्कृतिक ज्याज हो न जुगु ख लहना बापो या त छिन सोन्द केङु लस्ताइयोको भिन्दुना खला थगु छिगु भ्यार हेमालम नेपाल भाषा थे संचार माध्यम निरंतर रूप पिका चुनी गुठाको तस्क हे थाकु गुज्या ख यसा व थाकु गुज्या लहना चाहिँ याना वै छमु दु वेक अप इन द यो को भिन्दु ना नेपाल भाषा खेले विज्ञापन न तस्क हे लिमिटेड छ गुजी अले उलिस को मुख से मेन चाहिँ दतो सर्कुलेशन यु न प्रब्लम थे ता नेपाल भाषा या वा पो पिया वै निपौन दु मला संध्या टाइम्स ते निपौन दु गुज ल तर व सर्कुलेशन चाहिँ मरो आ तो ये महानगरपालिका दुने जुन कोर एरिया न भतिसास को थासे से सर्कुलेशन दु ओले ह पिन पिन चो स्वे मासा व पत्रिका त स्वे मफो ओले पत्रिका त स्वे गु थोंगले गेन आले रगा दाइबले पत्रिका नाप सम्बन्धित मन्ते सहे वियो चाहिँ पीडीएफ तेका व्हाट्सएप पे छ हेगु अजा गुजे एन छ मुजुर तर वय आइबले ला पत्रिका बिक्री वितरण न मजिगु जुल अनि ओले ह त सहे थाको एजे आछि पिनियो थासे न यदि पत्रिका त प्याचुना पिकाया चुना दियासा विशेषना सर्कुलेशन एसेम पतिसा ध्यान बि माते छ ताकि वियो को मनुध्यान थिनमा प्लस आले के बिसा दिमा न उठि जिमा मखला खला आ नुनुगो विकल्प होइ छुदो अनलाइन माध्यम चाहिँ पत्रकारिता यहाँ होइ छुदो अनलाइन याबले अफ न जुल यो को लगानी न मतु त अले अनलाइन हैन थगले विज्ञापन क्यागो वा कमर्शियली वायबल जिगु सम्भावना यो को एको दै छुदो आग्रह सक लहना या त यो को भिन्दुना देसासी ज्याजो साख न मेगु मिस्वान छना

Chigu Kala Sanskriti Rashtriya Maulik Paisan Daigu Sathweka Chunda Nyanisi Biskan Biskan Pahaya Thithi Jajoya Gosa Goya Oya Chungu Sansta Nepal Kala Sanskriti Uthan Samajya Gosale Oye Mahanagar Palika Baro Vadaya Sahakaresa Kipu Ya Panga Chungu Kirtipur Cineplex Hale Kirtipur Cineplex Hale जी गुरु हनीजा सांस्कृतिक बोझिया जाजोजो गुदो नेपाल सम्बत 1146 बस लागा अष्टमी अतिथिगतैगु वंगु आइतबा जुगु उगु जाजोले ये महानगरपालिका 12 वडाया दुनिया मुक्क झिन्युगु गुथि बाजं खलाया मु गुरुपिन्त हनीजा जुगु ख खेतला ये 12 वडा झिनसंगु गुथि बाजं खला त दुगु ख तर छगु बाजं खला सहभागी म जुगु ख गोसा खला नेपाल संस्कृति उत्थान समाजय नाय विजयलाल डंगोलिया सभा नाय से जुगु उगु ज्याझोले ये महानगरपालिका 12 वडाया नाय बालकृष्ण महर्जन मु पहा कहत उपस्थित ज्या दिगु ख अति हे ज्याझोले ज्यापु मागुथि नेपाय नाय सत्यनारायण डंगोल ज्याप संस्कृति विकास कोषय नोकु संत कुमार महर्जन व समाज सेवी अनिल कुमार महर्जन पहा कथ उपस्थित ज्या दिगु ख ये महानगरपालिका 12 वडाया नाय से मु पहा बालकृष्ण महर्जन नायकी थाना बाजा नाकी बाजा थाना ज्याझोया उलिजा याना दिगु ख ज्याझोले अनिल कुमार महर्जन मु गुरुपिन्त खादा ललाना दिगु खसा ज्याप महागुथि नेपाय नाय सत्यनारायण डंगोल बेताली चिका दिगु ख अति हे मु गुरुपिन्त ज्याप संस्कृति विकास कोषय नकु संत कुमार महर्जन तफली फुका दिगु खसा ज्याझोय सपनाय विजयलाल डंगोल दोसल्ला नेका दिगु ख ज्याझोले मु पहा ये 12 वडा नायलसे ज्याझोया मु पहा बालकृष्ण महर्जन गुरुपिन्त हनाप ललाना दिगु ख ज्याझोले गोसा खल या नोकु रामकृष्ण महर्जन किरण लस्कुस नोचु ब्यादिगु खसा दुजा नवीन जुसी हनाप बनाइने गादिगु ख ज्याझोले लोककवि राजभाई जोकमी सम्मानित ज्यादिपी ये 12 वडा दुनिया थिथि गुथि खलाया मु गुरुपिन्त समर्पित यानागु याना चिना ख बाजन न याना दिगु ख ज्याझोले मु पहा कथ झ्यादिम ये या 12 वडा या नाय बालकृष्ण महर्जन नुग ख तेगु झले झी गुरु हनीजा सांस्कृतिक बोजा छगु जो मुदुगु उत्कृष्ट ज्याझो ख दया दिसे 12 वडा दुनी भाषा कला संस्कृति जोगेने नीति छुन संस्था ज्याझो यागु खसा वडा गुहाली बिगु वचन ब्यादिगु ख संचार कर्मी लिसे गोसा खला नेपाल संस्कृति उत्थान समाज छ्यान्जे ललेन्द्र साक्य निहाका दिगु उगु ज्याझो स ज्याझो हनीजा ढुङ्का सांस्कृतिक बोझ ज्याझो न जुगु ख सांस्कृतिक बोझ यहाँ 20 वडा या जोशी देगले चुङ्गु श्री कुमारी सेकेन्डरी स्कुल पाखे नाटेश्वर प्याखन या बुगु खसा काठमाडौँ म्युजिक मण्डला पाखे कुमारी प्याखन वा बसन्त ऋतु प्याखन लिसे रोजबर्ड स्कुल पाखे मञ्जुश्री प्याखन न बुगु ख सांस्कृतिक बोझ यहाँ 12 वडा या म्याम मच्छा मेहालिम मेहालामी गंगा देवी महर्जन मेन्य ब्यादिगु ख सांस्कृतिक बोझ्या ये 12 वडाया परम्परागत तुक बाहा ह्युमत निस्तेनाथ खल व धर्मचक्र तननी खल पाखे थपिनिगु साङ्गीतिक बाज बोझ्या न यागु ख थु ज्याझो स भलन्दनी दरु गुथि त्वा खल धर्मचक्र तननी खल दुरु बाहा कुम्हा ननी खल कुमा ननी बाज खल मुसु बाहा ढेमु नेत्वा खल न बाहा दुमा त्वा खल परम्परागत तुक बाहा ह्युमत निस्तेनाथ खल श्री रुद्र विनायक नायकी गणेदेव खल श्री नित्यनाथ दरु गुथि नेमु नेत्वा खल श्री पचल भैरवी छिद गुथि श्री पचल भैरवी छिद गुथि फुफुसी युगु दुगु जासन श्री पचली भैरव तद गुथि खोल्चा पाखा व वन्दे त्वा खल या मु गुरुपिन्त हनिजयागु ख ज्याझो स पकान थजाको ज्याझो न चाहिँ जी सांस्कृतिक रूप न्यने वै चङ्गो गुली न थन त्वाले त्वाले चङ्गो बाजा फुसा त दु वे कपिन त चाहिँ तस्कमा हे हौसला जी थजाको ज्या मेमेको थासे न जुया हे चङ्गो दु थो ज्या चाहिँ थगु त्वाले त्वाले चङ्गो जुन बाजा यो संरक्षण जुइजुको मखु कि बाजा गुरुपिन त हाक्न यो को मस्ते त यो को नु
पुस्ता या त बाजले पोख्त या त मेगो पिन्त हप आमा बिदासी च्याचो साख्न मेगो मेसुवा तिना।

Niti ni se karikrom ni vogodu, ja si pisa sa protection osvoja diloži. Tora, ok, rashtrapati niti za ni vogoja čumbele, karikrom ni vogoja čumbele, pradhan mantri hala pihauna. A vo hala pihauna ka vo bare yokoje pakche bi pakche basva. A khasla sago za i sadharan sago da ini anusasan na moru the za i jura ni the rasa. Rashtrapati Ramchandra Podel अठे आर्थिक दया नीति नीति कार्यक्रम निभाया चौंबले एना प्याने मजूर रखा दापे योगों चला मुला चौसा इधमे अराजन चला रखा तर विशेष है ना राष्ट्रपति स्वाभी मनोदेशन दासा आज है उबले प्रधानमंत्री स्वास्थ्य ठीक मजूर गुहु वकारण से हला पियावे मागो रखा से बचावले थगो खां तय चमुदो यसा थो आयत रोकी रोके या दगासे सर्वोच्च अदालत है अंतरिम आदेश ब्यूगो चला ऐसा तभी तो प्रधानमंत्री ब्यूगो आदेश अजून सीरियो त्याचा न्याथेनासा तो सुकुमासी बस्ती खाली आदागो आदेश है आना कारण में जो अचुंगो अवस्था दुगु जैसनो अतः जागुए कौन से सुकुमासी बस्ती ला अनु मजे ढूँगला तर सुकुम्बासी बस्ती जगह मखुकी अनु सुकुम्बासी बस्ती लिको सोंगो छिए ना थुने गो रका छिए तावोगो जी खलान सुना गो जाए सामा खुशी या कहाँ सामा खुशी रागो खुशी या खंडे बोचिक भी डालला सा वो जाए पुराये वो अंडरग्राउंड जी ढूँगला अनु जाए स्लैप तया तोतना तावोगो दो खाली धोरे छिए रंगो सो बोच सोंगो सामा खुशी अले मनु तो जाए वो सामा खुशी लिक कहीं लिच्छेगा सामा खुशी ना पर जोरे जुके छेदना तो उड़ो छागनी का मुख लहरे ची उन्हें छेक खाना दी मतलब तरह आओ या सही तो ऐसे कुम्बास तो हटे आगो इले हो या वो खोला माप दंडे लागो छेद तरह गासे उन्हें छेद भटके या वो रगा छेद तावल खाने का बीबार अपनों वंगो बीबार या उन्हें बानी से छेद तावो को खरी सरी बार थुनी रगा तर शुक्रवार वो गो अंतरिम आदेश में आना से आधा का थुनी मखना मचुनी तर अंजो भी मंदे संसाय उन्हें स्थानीय बासी तो उन्हें निवात उन्हें योगला दो वेकअप से सुधाई जोंग रुड़ का देवले वेकअप से छेद दाम बले से उन्हें जागो माप दंडा लागो मजूगा अले वो जगह यो वेकअप इंगे लालपुर जाना दो नगर पालिका बना वेकअप से जगह यो छेद दंता नक्शा पास या का अले निर्माण संपन्न नो कोई तो आगु दिला मुला अब दो को प्रक्रिया कथा है यंत आगु था से अचानक व्यास ने का कोने से खालिया लगा से गिना था वही यदि जिमो छेद सही माप दंता दुनिया लासा तो भी ना नेपाल सरकार आहे निर्णय यंत आगु दो अनसाय गुली उचित क्षतिपूर्ति मतलब गुली थोंकने चलन चलनी दिवाखो वो अनुसार से क्षतिपूर्ति बिया क्षेत्रने माला रखा से अनुसारी मंदे यो कौनसला अनसाय यो को मंदे इच्छलागो दो तरह जिसमें तस्को नान्य नमः समा भाजो वे कौनसाय मेनो चौहदी वे कुना नेपाल वासे में यो को है चौहदी गुदो मतलब यो को निवाती कुछ सभ्यता विशेष ना संस्कृति सभ्यता सही समझें यह बात देखना वे का बैंड सुनी मां आज उस साइलेंस पड़ी जो वे को इच्छा ना अन्ना लागू करने का वे को लगा है मैं भी ना योग्यता से लागू करनी ऐसा जिसमें सही थोक है इधर जिसमें वास्तव में मुफ्त दासा लिपाई यो को निवाता विस्थापित जी को संघारे दो छाले लगा दे इबले सुनी गाले विशेष नज ये ला यो को खुशी तो दो अल खुशी लिक छी यो को दो मला आ खुशी लिप छी गुंगो से बागमती विष्णुमती मेजर खुशी लिक ला छी मरो तर ते छी छी रंग खुशी तो नि सामा खुशी आ छी पिसन खय मखा जी टुकुसा जुन टुकुसा उबले बालेंद्र सा मेयर जी साथ ए वो टुकुसा खुशी लिक आ रगा चाहिँ जे नेपाल हले मला न पुरा गाख न तर वो टुकुसा खुशी से अन तो रंगों छी या धुन धुना उनसे नहीं खानी वो जून बा हाथी सार दाव हाथी सार ने से उठके पाके तको प्रयाब बहुत तको वही बोले वो तो कोई मनोते छी धुने लाओ जी आसे वो पी मफ्त मगला आ वो से मापियो वो ना पी खास लग वो ना पी माला वो छतना पी माला छी यो वो अन्न चार मीटर डेबले अन्न चौंच
छाया सेन्टर का अप्यार ओलीपातिनी मन्दसम मुद्दा निवादेसम मुद्दा त्यही त्यही गर्न सत्ता शक्ति आडो चाहिँ अप्यार हुन छाया कम्प्लेक्स देखाइ दिएको ल मलाई अब चाहिँ थुइमा ल अब चाहिँ थुनु फुगो म छौ चाहिँ त निर्मास ख चाहिँ यहाँले थो थो सुकुम बासे थन थनी बोले जिमा वा थजाको खोलामा आफ्नो लागु छ त थुनीहरूका चाहिँ सरकार भइबोले समृद्धि नहेउरका खलाए मलाई जसको एम्बिसियस बजेट दिएका छौँ मुडो सरकार मलाई सरकारी वृद्धि खनिने बेले चाहिँ यो कोहे थन आर्थिक चाहिँ वृद्धि या गुरका नखुवाई तर दुपी मन त्यो त छे दुपी मन त्यो त छे थुना अहिले अन्त सुकुम्बासी याना चाहिँ समृद्धि वै खलाले छ खोला मापदण्ड कायम या खसा वा झिगु खुसी त त्यसँग लिङ्केको खसाला नपै इले बनिएको खसला छन् सोनी गयो बसिरहेको थिएँ छे धोको पिफालेजी एजिया पहिला चाहिँ मुखलाई धोको ख व्यवस्थित यहाँ बिस्तार बिस्तार या सज उठा सक्लो हे सरकार डोजरी भर धुरी एकदमै मन त्यो त थ्रोस्ट यहाँको ज्या यहाँ चुमुठेछौँ ठुके चाहिँ छिप्सँग गेना कयादिल जी मसिन गुम्ले मेगो ज्याजो चाहिँ ज्याजोले छिप्पिना पुठो बारे खला भन नै यहाँको जी मलाई तर आ चाहिँ नेवाते त न तहुङ्गु हे आपत बेटेङ्गु विशेषना हे सुनादिपी नेवाते त लात अथे चिरौँ व धर्थेन या खुस्तायोकै डुहने यले हे चाहिँ अहिले जुन थगु छिएँ दुने वा छिउ लिक्क अथे लाउदु अब त कोर्ली मापदण्ड कायम न हुने खसा यो कुसित यो कोहे नेवा त सुकुम्बासीजीको अवस्था चाहिँ बेफु फोकस छिपिन्द तसै तपाईँहरूले चाहिँ बालाको मनन याना दिसाका इनाभ्यासी थौयाको धक्ले लिपाङ्गु मेते अलि ज्याजो पाखे उजन पनि प्राविधिक संयोजना लागि रविन्द्र यादव सुब्बा दासी यो कोही सुब्बा